राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सुपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सुपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी तो निकलदी है तां सब मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ए पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे, नानक राहो पछाणे से। इस दा उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगदे हन, गंधार अते धैवत वर्जित हन। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हन भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। श्रवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मण सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सत्य फरमान सत्य तेरा कर्म सत्य निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब जू
1: सच्ची तेरी सत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर्ज में सो कच कच महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सत्या वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिर सपाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थिंज की ता करना सर जा
0: महला तू जा एक सच्ची की है कोठरी सच्ची का बजबा एक नाम कुमार एक नाम कुमार करीबनास एक नाम पाने कडले एक नाम आया बचनवास ए पी आखन जा पे किशन रा नानक गुरु जाने जाको आपका

गज के बोलना सतनाम श्री राज पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना आवे धर्म भालिया उथे सचो ही सच ने बड़े तुम वक्त दे जमालिया थाओ ना पाएन कूड़ियार मुह काले दोष चालिया तेरे नाए रते से जिन गए हार गए सुठगण वालिया लिखना आवे धर्म भालिया।

0: सत्कर्ता श्लोक मला पहला विस्मनाथ विस्मत वेद विस्मत जी विस्मत पे विस्मत रूप विस्मरंग विस्मत नागे फिरे जन विस्मत पौन विस्मत पानी विस्मत अग्नि खेरे बडान विस्मत अर्थ विस्मत खान विस्मत साधक के प्राण
1: विस्मत स्नोक विस्मत विरोग विस्मत भुख विस्मत पौ विस्मत शिफ्ट विस्मत सला विस्मत औजल विस्मत रा विस्मत नेने विस्मत दू विस्मत देखे हाथ ना दू देख बड़ान रिया विस्मत नानक बुझन पूरे
0: महला पहला कुछ जिसे कुछ सुनिए कुछ

A number. A sub to strongly number. जिसने ए मंग मंग ली है उसकी यहां सारिया मंगा पूरी है। वो कड़ी मंग नानक को प्रभ मया कर सच देव अपना, क्योंकि सच सदा रहने वाली है। कूड़ की खुटी नानका कूड़ में मुक जाए, पूरे पदार्थ में भी नहीं रहे। तो इस वास्ते नामिर पूर्ण निकुटे नाम का ओणक सच तो सिद्ध दी है दास। पातशाह मैनु सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा, उसके कर्म भी सच्चे। जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सत्कार। हाँ जी, रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान, सच्चे कर्म करने वाले हजूर फरमाते हैं सच्चे मार्ग चल देना उस तत् करे सच। जरा सच पे बोल रहे वो दुध पे, जरा झूठ पे बोल रहा है वो जहर पे। सच बोलन जेडा पुन कोई नहीं, झूठ बोलन जेडा पाप। सच पुराना ना नाम ना मेरा, तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम, उस वाहिगुरु का पवित्र नाम। नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई, वो नाम केड़ा है वाहिगुरु। वाहिगुरु गुरमंत्र है, जब हमें वाहिगुरु गुरमंत्र है, जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु ना। जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब है, और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब है। और सानू केड़ा अंब चाहिए फल, तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा लगा, फिर उसकी राखी करनी पैदी, संभाल करनी पैर सामू जरा अम फल है वह प्राप्त। इसे तरह उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द। वाहगुरु गुरु मंत्र है, जब ये गुरु का मंत्र। बाबा इस सिंह जी महाराज वचन करते सन, भाई ये गुरमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाह ही टिकट, दुनिया भी सफर करना है ता भी टिकट दी लो, टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता। और इसे तरह उस दरगाह जाने वास्ते मालक तक पहुंचने वास्ते प्लीज सानू टिकट चाहिए। एक दिन वस्ती रस्ती दुनिया नु छड़ के पुत्र धियां नु त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा, महाराज ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह भला दसो भाई जिस रस्ते ते एक दिन इंसान ने तुरना है, महाराज पता दसो कितने वीर उसके को कितने। दुनिया भी सब बॉम्बे जाना मीलों का पता,
یہ بھی پتا بھی اتنے سمے کے بعد پہنچ گئے. تھوڑے جے میلوں واسطے انسان ٹکٹ بھی خریدا ہے, سیٹ بھی بک کرتا ہے, کپڑے بھی نال لے لینا ہے, بستر بھی رستے ٹیلیگرام بھی دے دینا ہے دوستان, میں فلان ٹرین پہ آ رہا میرے اسٹیشن پہ. تھوڑے جیسا حضور کہتے ہیں کہ تو لمبے پینے مہاراج کنے میل ہے, تو حضور فرماؤ دے

मार्ग देख दिन तुरना है, गरीब ने भी तुरना है, अमीर ने भी तुरना है, कंगाल ने भी तुरना है, राजे महाराजे ने भी तुरना। कौन अपना महाराज तंता इतने डे जी रह गए, कारण भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धियां ने भी साथ नहीं देना, कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर है।

0: para dar a hora. देखना तुम्हारी के दराई की माता जी बच्चों कर दे सन टिकट नु कितना सवाल के यूके जाना हो हजारा रुपया की टिकट होती होती भी समान टिकट जो सिर दे के वाहगुरु जो शब्द गुरमंत्र सानू गुरु तो गुरमंत्र जो नाम है ना तो सानू गुरु तो और कोई नाम नहीं दे सकता नाम पूरे गुरु तो मिले नाम की जो प्रेरणा है ये नाम जपने वाले महापुरुष का नाम गुरु तो नाम अमोलक रतन है पूरे सदगुरु पूरे गुरु तो किस वेले मिले जिस वेले असि अमृत छे पंजा प्यारे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी जिस वेले पंज अपन भुलां नूं सोध अरदास कर अमृत तैयार करते हैं तो कलगीधर पिता जी का हुक्म है कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी भी जिस वेले पंज प्यारे त्याग पर त्याग अपने सोध के अपने आप को सोध के साहबां की हजूरी खड़ोते होते हैं हजूर कहना उन्होंने पंजा के अंदर मैं आप आ गया पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे पंच सो है इतने कोई व्यक्ति नहीं व्यक्ति पंजा ही शामिल कलगी पातशाह जी ने इन्होंने बंधना कट दो कोई व्यक्ति पर जो गुरसिख बाणी का निकले भी प्रेम गुरु के हुक्म च रहना फिर अमृत पान कराने को पहला फिर भी अरदास करना पातशाह कलयुगी जी हर वे हर श्वास भुलना आप बख्शिश करो पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगे गुरु बख्शते बहुत पंच प्यारे त्याग कर फिर अमृत छकने वाले ने उस वेले गुरमंत्र दी दा गुरु गुरु तो मिलेगा इस नाम की प्रोरता महापुरुष बाबा जी बचन करते सन गुरुआ गुरु गुरु ग्रंथ पर संगत महापुरुष केड़े महापुरुष है दी जेड़े सन गुरु ग्रंथ साहब जेड़े तोड़ते उन्होंने दी संगत महापुरुष बचन करते सन जो गुरु ग्रंथ साहब तो प्यार तोड़ता है वह सानू गुरु तो तोड़ी संगत नहीं जेडे जोड़न वाले हैं जिन्हों की संगड़िया दुरमत मजे मित्र सारे सही हाँ नी जग सभाया जन नानक विरले कहते है ही कोई नहीं भाई है विरले ना ही घने फैल पकड़ नाक फोटन वे गुरु ना भी किसी चीज का और नाम दी प्रेम जिस तरह मास्टर इनम नहीं ना बन सकता मास्टर हो इनम हो इसे तरह संत सारे चले हैं पर जो धन गुरु नानक पातशाह जी का संत है गुरु सिख है महापुरुष है और आप गुरु भी बनेगा सब बड़ा जोड़ देगा उन्होंने महापुरुषों की संगत नाल संत
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो Broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते उस सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल है, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू ए पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो, जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के नर्वर्ण जात हर पात नहीं जैन रूप रंग अरगी पी सत्य है अचल नूतन भव प्रकाश अमित पूज कह जय इंद्र इंद्राण शाहो शाहन गणिज फिर भ्रमण में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतगुरु आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना दी आधारी नानक दास संत पाछा परियु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा

कृपा करो, दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर, लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। Whatever you desire, you shall receive that reward, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jyot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karte, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aavai, mohe anth luptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।

तुमरी सन तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले तुमरी सन तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले।